निर्भाव, निर्वैर, अकाल मूरत, आजूनी, सैभंग, गुरप्रसाद, जप, आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच।